देव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भेव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सुरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उतपुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा वै बैठा, कहूं सिमट पियो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत वै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकटने आए हैं। रशा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मोह हारे हो। रिद सिद कर मोह सब होई, दुष्ट शास वै सकै न कोई।

दारद दुष्ट दोख ते रहा, खड़के त मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहु उबारी, सर्ब ठौर माहो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई सवैया, पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम पुरान कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बांगहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार, राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज छेती मन वजियां वाधाइया, राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया, शब्दों ता गावो हरी केरा मन जनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना, सब ना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे सदा शिव सला तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत तुदवस कीते काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहा परपूरे, बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे, मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होय उधारो, ए वस्त जी ना जाई नित नितरा खुर धारो, तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो, सलोक महला पंजवां, तेरा कीता जातो नाही
ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਅੰਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ।

अकाल पुरख धन धन गुरु गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज आप जी का कुटान कुटान शुकराना आप जी ने अमृत वेले संगतां नूं खुले दर्शन दिदारे बख्श के निहाल कीता। इस वेले आप जी की पावन हजूरी विच शामा वेले दे दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच आप जी की इलाही बाणी दे कीर्तन सोदर की अरदास आप जी के चरण कमला पास आप जी ने मेर करनी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दाराई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा संगत दियां तिल फुल भेटावां सेवावां दर ते प्रवान करनियां सभना नूं चढ़दियां कला तंदुरुस्तियां बख्शणियां सभना परिवारां विच आपसी एकता इतफाक प्रेम भरोसे दियां दातां बख्श के निवाजणा। सतगुरु जी इन्हां समयां नूं मुख रखदियां आप जी के हजूर समूह संगत वल्लों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है दर ते प्रवान होवे करो कृपा अपने इलाही फरमान बख्श के कृतार्थ करो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।

कबीर अंबर कान हर छाया, बरख भरे सरताल, चात्रिक ज्यों तरसत रहे, तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जौ निस बिछुड़ै,

ममता माया दे मूह विच उदां ही कढ़िया होया जिवें कूंज दा कढ़िया होया। कूंज चुगदी है चितार दी बच्चे नूं ही है, बंदिया तू भी चोग ते बड़े चुगदा पर चितार दा बुराइयां नूं ही है। चाहीदी उल्ट खेड सी भी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते। किन्नियां प्यारियां उदाहरणां दित्तियां महाराज ने बाणी च। एक बोल आउंदा है सतगुरु दा, आख्या तेरी हालत खूह दे डड्डू वर्गी बन गई है जिन्हों आले दुआले की कोई समझ नहीं है।

खाओ मनशा मार दुबिदा सहज समाणी पाया नामे अपारा हर रस चाख मन निर्मल हुआ किल बिख काटन हारा शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता

नाम संतन की होटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै उदरै सगले कोटा राव। संत संग जस गाया ये पूर्ण अर्थन पाया, कौ नानका मिटाया सब पार मन दृहि आया। सोठ मल्ला पंजवा गुर पूरे पूरी कीनी, बख्श अपनी कर देनी नित आनंद सो पाया। तब सगले सुई वसाया हर के भगत फल दाती, गुरपुरे कृपा कर दीनी वेले किन्नी जाती रहाओ। गुरबाणी गावो पाई ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया पूरब लिखिया पाया। सोठ मल्ला पंजवा गुरपुरा अराधे कार सगले साधे, सगल मनोर पूरे बाजे अनहतुरे। संतो राम जपत सुख पाया, संत स्थान बसे सुख सहज सगले दुख मिटाया राव। गुरपुरे की बाणी पार ब्रह्मन पाणी, नान दास बखाणी निर्मकत खाणी। सोठ मल्ला पजवा भूखे खाव लाज ना आवे, त्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों लकाइए, जय सिमर दरगे मुख उजल सदा सदा सो पाइये रहाओ। जो कामी काम लभावे त्यों हर दास हर जस पावे, जो माता बाल लपटावे त्यों ज्ञानी नाम कमावे। गुरपुरे ते पावे जन नानक नाम तिहावे। सोठ महला पंजवा सुख सांद घर आया, निंदे के मुख छाया पूरे गुर पैराया, बिंसे दो सुभाया संतो साचे की वडियाई, जिन चर सो बनाई रहो। बोले साहब के पाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रसुदाई जिन पूरी बंट बनाई। सोठ मल्ला पंजवा प्राव अपने हृदय त्याय, कर सही सलामत आए संतो पिया संसारे, गुर पूरे लह तारे। संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत गणना गणी राके बाल को पाला रहाओ। हर नाम हृदय उड़तारे तिन सभ्य थो सवारे, गुर पूरे तुस दिया फिर नानक दू नथिया। सोठ मल्ला पंजवा हर मन तन वसिया सोई, जय जय कार करे सब कोई, गुर पूरे की वड्याई ताकि कीमत कहीं ना जाई रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संतां परवासा तेरा, नानक प्रभ सरनाई मुख निंद के शाई। सोठ मल्ला पंजवा आगे सुख मेर मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता परमेसर बनत बनाई, फिर डोलत कत होनाई साचे साहब से मन मानया, हर सरम निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करे प्रतपाला, अचारे तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करे प्रतपाला, अचारज तेरी वड्याई नित नानक नाम ते आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सत्संग जीओ, अमृत वेले तो सजे दीवान दियां हाजरियां भरियां ने, नेतनाम अनुसार बाणी दे पाठ सरवण कीते ने। सतगुर कृपा करे सब नू सतगुर चढ़दियां कला बख्शन। सो आओ समा है आ सकी वार दा कीर्तन दा, भाई साहिब भाई दिलबाग सिंह जी दा जत्था सरवण करा रहे ने आ सकी वार दे कीर्तन। बड़े प्यार नाल सरवण करो। पार्क लई पार्किंग लई आप जी नूं बेनती है, गुरुद्वारा साहिब विखे गड्डियां दी पार्क इस तरीके ना करो कि किसी भी गड्डी दे विच कोई रुकावट ना आवे, क्योंकि थोड़ियां जिहां पार्किंग दी लाइनां बदलियां गईयां ने और जिथे रस्ता हुंदा उत्थे गड्डियां ना खिलारो, और जिथे हैंडीकैप आ उत्थे भी गड्डी खिलारन दा यतन करो। पार्क उत्थे करो जिथे आपां नूं जगह मिली है। गुरु कृपा करे सब नूं चढ़दियां कला सर्व करिए। आसा की बार दे कीर्तन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पौड़ी सेव की संतोख जिनी सचो सत्याया ओनी मंदे पैन रखे कस के तुम कुमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला दिते बचड़े सुबाया बड़े आई बड़ा पाया बड़े आई बड़ा पाया।

तीर्गत मुच ओ जे आवै अस कर जाय निरसकित फल फिके फुल बक बके कम न आवै पत मिटत नी नानका गुण चंगियाईआं तातु सब।

68 तीर्थ जे नावे उतरे नाई बैल, जिन पड अंदर बार गुदड़ते भले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुपी कर जाए, परवाह नाही किसे गेरी बात सचे नाहा।

तुमरे गात मैं तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी क्या ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौत जी सहाय वार, श्री भौत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया करना उन दयावे ताए। साब थाई होई सहाय दसवें पातशाह। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ साब थाई होई सहाय। दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दे दर दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे। पंजा प्यारियां चौं सब जादियां चालियां मुगतियां अठियां जपियां तपियां शहीद सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाज दे के अंडठ कीता तिन्हां गुरमां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सी दिते बांध बांध कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विच उबाले गए खोपरियां लुहाईयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल ली कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असहे ते कह असहार दे शीदो सिकिद के सांसवास संग नभाई धर्म नहीं हारिया तिना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां की कमाई का ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा है देते फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालस जी के बोल बाले खालस सब बोलो जी वाहे। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकर। खालस जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाहे। सिखां दा मन नीवा मत उची मादे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामे गुरु गरीब निवास जी पातशाह पन दे सदा सहाज दे तार पिता जी आओ श्री ननकाणा साहिब गुरुद्वारे गुरुधामा तो जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। निमाणियां दे माण नताणियां दे ताणे उट्टियां दी उड़ने आसरन दे आसरा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आप जी पार बख्श रहमत कृपा दा सिखा मृतले शब चौंकी विच आप दी लाही बाणी दे पाठ उपरंत श्री आस सचिव वार कीतनी जी भोग जी की अरदास। भुल चो माफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवण सरबत संगतां दी हाजरी तिल फुल भेटावां अपने दर ते प्रवान करनियां सित मेहर प्रयात रखना तंदुरुस्तियां बख्शणियां परिवारां विच सुख वरतौणा सरबत संगतां दे कारोबारां दी बरकतां दरों करों सिखी सिद्ध भरोसा नामदान बख्श के निहाल करना पान दे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना पवित्र हजूरी विच कड़ा प्रसाद देगा हाजरा दार प्रवान होवे प्रवान दे संद वरताउण दी आग्या बख्शो मेहर करो पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी से गुरम प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया तेरे नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दौरा गया भई अकाल की साहब सिखन का हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा खुआर होए सब मिलेंगे खुआरोए सब मिलेंगे बजे शरण जो बोले सो निहाल
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

इकयरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई इकयरदास पाठ कीरत की

डुबदे पत्थर तारे, जीड़ा अगन बराबर तपे, पीतर वगै काती, प्राणवात नानक हुकम पछाणे।

0: छुट्टी ना।
1: गुरबाणी कीर्तन दी इतनी सेवा प्रवान, उस परमात्मा दी अगाध बोध बाणी।

0: जय मात पिता सत मीत न पाई मनुहा नाम तेरे संग सहाई
1: जय महाप्यान दूत जंगल तय केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिन माही उदारी
1: अनक पुने चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव हो सुख नेरे
1: सकल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपो सुखिया
0: लाख करोड़ी बंद न पर हर का नाम जब ते निस्तर
1: हर का नाम जब त्यागावे
0: जय मार गे हो जाते अकेला ते हर नाम संग होते सहेला
1: नाम मन सदा ते आइए नानक गुरमुख परम गत पाइए
0: छूटत नहीं कोट लखवाही नाम जब ते पार पराही
1: अनक विघन जय आए संगारे हर का नाम तत्काल उदारे
0: अनक जून जन में हर का नाम तत्काल
1: जून
0: जन में
1: मर जाम नाम जपत पावे विश्राम मल कबू न तो हर का नाम कोट पाप को
0: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग
1: मार के गए जाए न कोसा हर का नाम हां संतोषा
0: जय पेंडी महान गुवारा हर का नाम संगी उजियारा
1: पंत तेरा को ना सियानो हर का नाम ते नाल
0: जय मा प्यान तप्त वो काम ते हर के नाम की तू परशाम
1: जहां तेरखा मन तो जा करखे ते नान का हर हर अमृत बरखे
0: भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात
1: हर जन के हर नाम दान पार ब्रह्म जन की नो दान
0: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है
1: हर का नाम जन को मुक्त जोगत हर के नाम जन को तृप्त भोगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न पंग
1: हर का नाम जन की वड़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग
1: हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा
0: हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप प्रभ दीना
1: हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पह जन हर हर जपे हर का भगत प्रगने शपे
0: हर की भगत मुक्त वो करे नानक जन संकेते तरे
1: पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम
0: सते उत्तम हर की कथा नाम संत दर्द दुख लथा
1: नाम की महिमा संत रिद बसे संत प्रताप दुर्त सब नसे
0: संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम

0: मन ते हुटे
1: सोच करे दिन से रात मन की मैल न तंते जात
0: इस देही को बहुत साधना करे मन ते कहूं न बिखिया टरे
1: जातो वे बोबे नीत शुद्ध का हो काची बीत
0: मन हार के नाम की महिमा ऊंचे नानक नाम उदरे पतित बहुमूच
1: बहुत श्याम विजन का पाव व्यापे अनक जतन का कृष्ण नाथ रापे
0: देख अनेक अगर नहीं बुझे कोट पाव दरगे नहीं सिजे
1: छूट सनाही उब प्याल मोहे व्यापे माया जाल
0: अगर कर तू सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने
1: का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए
0: चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे
1: जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे
0: जे को अपनी शोभा लूरे साध संगे हो मशहूर है
1: जे को जन मरण ते डरे साध जना की सरनी परे
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा सो गनिए सब ते ऊंचा
1: जाका मन होए सगल किरीना हर हर नाम तन कट कट चीना
0: मानी अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साधन।

0: सगल क्रिया में है उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया।
1: सगल उद्यम में उत्तम पलार का नाम जपो जी सदा।
0: सगल वाणी में अमृत बानी, हर को दासु रसन बखानी।

रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पारे जोवन पर जोवन भोजन सुख सूद यो नर गुण गुण कसु न बूझे बक्सल हो तो नानक सीजे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला दीने हाथ पाप करने तरसना तसे त्याग वर संग रचना आदि अंत जो राखन हार तस्यो प्रीत

0: नान राख लियो अपन कर कर्म
1: तू क्या कर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास
0: मात पिता हम बार के तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे
1: जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो।

0: तुले पाछे पावे, एक वस्त कारण खोट गवावे।
1: एक बिना दे दस बिहर ले तो मुड़ा को कहां करे।
0: जिष्ठा करसो नाही चारा, ताको की जय सदनम सकारा।
1: जाके मन लागा प्रम मीठा, सर्व सुखता हो मन बूठा।
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया।
1: अंत साव अपनी दे रास, खात पीत बरते अनलास।
0: अपनी अमान कछु बाहर सावले, अज्ञानी मन रोस करे।
1: अपनी प्रतीता पी होवे, बोर उसका विश्वास न होवे।
0: जिसकी वास्ती से आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे।
1: उसे चौकन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल।
0: मनक पात माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत।
1: छाया सो रंग लावे, ओ बिन से ओ मन पछतावे।
0: जो दिसे सो चलन हार, लपट रहे हो तहे अंधार।
1: उसे जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के।
0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई।
1: मिथ्या तन तन कटंब सबाया, मिथ्या हो में ममता माया।
0: मिथ्या राज जोवन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल।
1: मिथ्या राखा स्त्री असभस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता।
0: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान।
1: अंतर परसाद की शरण, नानक जप जप जीवे हटके चरण।
0: मिथ्या सरबन पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर को हिरे।
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर तैयार पाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद।
0: मिथ्या चरण पर विकार कोतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे।
1: मिथ्या तन्ने पर उपकारा, मिथ्या बात लेत बेकारा।
0: जैन बूझे मिथ्या सब पै, सफल दे नानक हर हर नाम ले।
1: मृति सागत की अर्जा, साच बिना कहो सूचा।
0: मिथ्या नाम बिना तन अंध, मुखावत ताके दुर्गंध।
1: सिमरन रहन बिरथा ब्याए, मेघ बिना जो खेती जाए।
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ धाम।
1: तन तन ते जय जट बद्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ।
0: रहते अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत।

0: जय प्रसाद छति अमृत खाए ते ठाकर को रख मन माहे।
1: जय प्रसाद सुगम धन धन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे।
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याहे सदा मन अंदर।
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पै सिमरो ते रसना।
0: जय प्रसाद रंग रास भोग नानक सदा त्याहिए त्यावन जोग।
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कर जावल लावे।
0: जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ता का जस गा बीजे।
1: जय प्रसाद तो सबको माने मुक्ता को जस संग माने।
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
1: प्रभु जी जब तर गए मान पावे नानक पासे ती कर जावे।
0: जय प्रसाद रोग कंचन देही लेवला हो तिस राम स्नेही।
1: जय प्रसाद तेरा होला रहत मन सुख पावे हर जस कहत।
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके मन सरनी पार ठाकर पार ब्रह्म ताके।
1: जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊँचे।
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करहे।
1: जय प्रसाद है भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय।
0: जय प्रसाद अश्वहस्ता सवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी।
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभ अपने मना।
0: जन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई।
1: तिसे त्याई जो एक लखे इहां हुआ नानक तेरी रखे।
0: जय प्रसाद करे पुन बहुत दान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
1: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी।
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नूप।
1: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह।
1: जय प्रसाद सुने कर नाद जय प्रसाद वेखे बिस्माद।
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जे बसना।
1: जय प्रसाद हस कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
0: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सह जे समावे।
1: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार।
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त का को जाप।
0: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे ध्यान मन सदा हजूरे।
1: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू दास्यो राज।
0: जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए।
1: आप जपाए जपे सो नाओ आप दुआए सो हर गुण गाओ।
0: प्रभु कृपा ते प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास।
1: सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मातु उत्तम होए।
0: सर्वन दान प्रभु तेरी मैं आप हो कछु न किन्हु ले।

0: बनाई।
1: साध के संग मुखु जल होत, साध संग मल सगली खोत।
0: साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग मरहे सो ज्ञान।
1: साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नवेरा।
0: साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग को पर जतन।
1: साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी।
0: साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर भूले।
1: साध के संग गावे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा।
0: साध संग होए सब की रेन, साध के संग मनोहर वैन।
1: साध के संग नकत हूं तावे, साध संग स्थित मन पावे।
0: साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न।
1: साध संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा।
0: साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग मा पनीत।
1: साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग न बीगा पैर।
0: साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा।
1: साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजे सब आप।
0: आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई।
1: साध के संग ना कम हूं तावे, साध के संग सदा सुख पावे।
0: साध संग बसे गोचर ले, साधु के संग अचल सहे।
1: साध के संग बसे थन ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे।
0: साध के संग रणे सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के करवान।
0: साध के संग सब गुण उदारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे।
1: साधु के संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को बरसावे।
0: साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सो बासुर देवा।
1: साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन।
0: साध के संग सर्व धन गम, नानक साध के संग सबल जनम।
1: साध के संग नहीं कष्ट काल, दर्शन पेट थोत निहाल।
0: साध के संग कलो कटरे, साध के संग नरक पर हरे।
1: साध के संग यहाँ वहाँ सहेला, साध संग बिशरत हर मेला।
0: जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरता जावे।
1: हर ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उधरे साध सुन रसे।
0: साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ।
1: साध के संग न मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तर।
0: साध के संग लगे प्रमीठा, साधु के संग कट कट डीठा।
1: साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी।
0: साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध मिटे संजोग।
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर।
0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने ते तब ज्ञान।
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर।
0: साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत।
1: साध की शोभा उच्च ते ऊंची, साध की शोभा मूच

0: दीप जैसे जल में कमल लीप,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सुसर्व को शोक,
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृ समान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक जो सुधा को खुने को चंचल लीप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का है गनाओ नानक जो पाव का सहज सुपायो,
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रगास जैसे तरी ऊपर आकाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच थे ऊंचा मन अपनी है सब ते नीचा,
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जन प्रव्याप करे,
0: ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया ब्रह्म ज्ञानी ने कुछ बुरा न पाया,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की अमृत बरसी,
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जोगता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का पूर्ण ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
1: ब्रह्म ज्ञानी एको प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परि उपकारो महा,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाई तंदा ब्रह्म ज्ञानी लतावत बंदा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला,
1: ब्रह्म ज्ञानी सल सल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार,
0: ब्रह्म ज्ञानी के रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रसंग,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेत्ता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मानत,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट पागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे,
1: का कौन जाने पीत ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं बरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूरन पर्ख विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म

0: श्रोते कई कोट पीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यानता रे कई कोट कब का विचार है
0: कई कोट नवतन नाम ते आव है नाने करते का अंत न पाव है
1: कई कोट पे अभिमानी कई कोट ज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपिगातम निकोर
1: कई कोट पर दर्प को हिरे कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश पर माहे कई कोट सिज्जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर पे पाए कई कोट पातर बिरख निप जाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल
1: कई कोट सस्य सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर
0: सगल समग्री अपने सूतार नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार
1: कई कोट राज ताम साधक कई कोट भेद प्राण सिमरत शास्त्र
0: कई कोट किए रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट किए जर जीव कई कोट गिरि में स्वर दीवे
0: कई कोट जक नर पिसाच कई कोट भूत सुप्रे सुकर मिर्गाच
1: सब ते नेरे सबूत दूर नानक आप अल्प दरिया पर पूर
0: कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म जीवे मरे कई कोट भोजनी फिरे
0: कई कोट पैठ थी खाहे कई कोट काल है थक पाहे
1: कई कोट किए धनवंत कई कोट माया में चिंत
0: जह जह पाणा तह तह राखे नानक सबके प्रभ के हाथे
1: कई कोट पै मेरा की राम नाम संग दिल लागी
0: कई कोट प्रभ को खो जनते आत्म है पार ब्रह्म लहंते।

0: क्रोध बिकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल।
1: कबू हुए वह बड़ राजा, कबू भिखारी नीच का साजा।
0: कबू अपकीर्त में आवे, कबू पला पला कहावे।
1: जो प्रभु राखे ते वीर है, गुर प्रसाद नानक सच कहे।
0: कबू है पंडित करे बखियान, कबू मौन तारी लावे ध्यान।
1: कबू तट तीर्थ स्नान, कबू से साधक मुख ज्ञान।
0: कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन पर

0: जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए।
1: कृपा दे बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक छूटे।
0: सस खटेला को उठता वै तृप्त नावे माया पाछे पावे।
1: अनक भोग विख्या के करे न तृप्तावे कम कम मरे।
0: बिना संतोष नहीं को राजे सुनम नोठे बिठे सब काजे।
1: नाम रंग सर्व सुख होए बट भागी किसे प्राप्त होए।
0: करन करावन आपे आप सदा सदा नानक

0: तो किश होए थान थन अंतरे कसोए
1: अपने चेत्याव करने हार कौत करे रंग अपार
0: मन में है आप मन अपने माहे नाने कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी
0: सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना
1: पला पला पला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी घट का सुने श्रवण बखे।

0: दुखन आर जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे।
1: संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए।
0: संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन।
1: संत के देखो रखे न कोए, संत के दुखन तान प्रस्त होए।
0: संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतर।
1: संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे।
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिग जोन किरमाए।
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को झले।
0: संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए।
1: संत दुखी को नाव को नाए, नानक संत पावे ताओ ए भीगत पाए।
0: संत का निंदक महात ताए, संत का निंदक खिन टिकन न पाए।
1: संत का निंदक महात यारा, संत का निंद परमेश्वर मारा।
0: संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुख यार दीन।
1: संत के निंदक सर्व रोग, संत के निंदक सदा बिजोग।
0: संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख।
1: संत का दोखी सदा पवित, संत का दोखी किसे का निमित।
0: संत के दोखी को डान लाग, संत के दोखी को सब त्याग।
1: संत का दोखी महंकारी, संत का दोखी सदा भिकारी।
0: संत का दोखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे।
1: संत के दुखी को नाई जाओ, नानक संत पावे ताले मलाए।
0: संत का दुखी अद बीते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुँचे।
1: संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए।
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा।
1: संत के दुखी की जड़ किस नाहे, अपन बीज आपे ही खाए।
0: संत के दुखी को वरना राखन हार, नानक संत पावे ता लय उबार।
1: संत का दुखी ओ बिलाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए।
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईदन नहीं त्रापे।
1: संत का दुखी छुटे अकेला, जो बार तिलकित माए दहेला।
0: संत का दुखी तरम ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत।
1: एत निंद का तरी पया, नानक ज्योति पावे सोई दिया।
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए।
2: संत का दुखी सदा सहाय, संत का दुखी ना मरे ना जुआई।
0: संत के दुखी की

0: मंदर को थम मैं थम मन त्यो गुर का शब्द मन है अस्थम मन
1: यो पका नाव चढ़तरे प्राणी गुर चल लगत निस्तरे
0: यो अंध का दीपक पर गास गुर दर्शन देख मन हो।

0: अष्टपदी।
1: सतगुरु सिखे करै प्रतपाल, सेवक गुरु सदा दयाल।
0: सिखी गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे।
1: सतगुरु सिखे बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे।
0: सतगुरु सिखो नाम तन दे, गुर का सिख वड भागी हे।
1: सतगुरु सिखा हलत पलत सवारे, नानक सतगुरु सिखो जी नाल सुमारे। आपस को कर कश न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे।
0: सतगुरु के पास तिस सेवा के कार्य रास।
1: सेवा करत हुए नह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी।
0: अपनी कृपा जैसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले।
1: बीस विश्वे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान।
0: सो सतगुरु जस दे हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ।
1: सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता।
0: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म, एके अपना एक परम।
1: सह सियान पलै न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइए।
0: सफल दर्शन भेट पनीत, पस जन का निर्मल रीत।
1: भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे।
0: सुन कर बचन करने अगन, मन संतोखा तंपति अन्य।
1: पूरा गुर अखियो जाका मंत्र, अमृत पे खै होए संत।
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस आवे ते लै मिलाए।
1: जिह बा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूरन विवेक।
0: आहो बोल।

0: मन में राखे हर हर एक।
1: अंधकार दीपक पर गासे नानक परम दुख ते नासे।
0: तब तो माहे ठाड वरताए अंध पया दुख नाठे पाए।
1: जन्म मरण के मिटे अदिसे साधु के पूरन अपदिसे।
0: पौचुका निरपोहे बसे सगल ब्या मन ते खै नसे।
1: जिसका सातन कृपा तारी सा संग जन नाम रारी।
0: हित पाई चुके प्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवण।
1: निर्गुण या सरगुण भी होई कला तार जन सगली मोही।
0: अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए।
1: हर बिंदु जानाई कोई सर्व निरंतर को सोए।
0: ओत पोत रविया रूप रंग पे प्रगास।

0: नाथ
1: देवता सचो भगवंत संत जना का निर्मल मत
0: एक आस राखो मन माए सर्व रोग नानक मिट जाए
1: जिस तन को चार को टूटता वै सो तन हर सेवा ते पावे
0: जिस को नित भाषे मीत सो सुख साधु संग प्रीत
1: जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पजार की सरनी
0: अनक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए
1: सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दर के परमान
0: मन पर बोधो हर के नाए दैद स्थावत आवे ठाए
1: ताको बिगन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए
0: कवता ती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: ओबिन से पूर्ण होए आस भक्त पाए आत्म प्रगास
0: तित कर जाए बसे अबनासी कहो नानक काटे जम फांसी
1: अत विचार कहे जन सच्चा जन्म रे सो काचो कच्चा
0: आवागमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव
1: यो रतन जन्म का होए उदार हर सिमर प्राण।

0: जानो आप
1: जय छालिया छेदिया भेद समाया हुआ किसे व्यापत माया
0: आपस को आपे आदेश तह गुण का नाही प्रवेश
1: जय एक एक एक भगवंता तह कौन चित के लागे चिंता
0: जय अपने आप आपत तह कौन कथे कौन

0: गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में ए विश्वास
1: संत जना का भेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सो वचन।

0: सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत
1: तिस पावेता करे विस्तार तिस पावेता एक अंकार
0: कला लखी न जाए जिस पावे तिसले मिलाए
1: कवन नेट कर गई दूर आपे आपा भरपूर
0: अंतर गज से आप जनाए नानक ते जने आप बजाए।

0: पार बनाम निकट कर पेख
1: सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद
0: सास नित त्यागो त्रंग संत जना की तोर मन मांग
1: आप छोड़ बेंती करो सास गगन सागर तरो
0: हर तन के पर लियो पंडार।

0: भिंदे अमृत रस पियो
1: चित में अनेक एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन
1: संत कमावत हो दियो दार आप करे लोग निस्तार
0: सफल जीवन सफलता।

0: उदर तन के साथे
1: सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रव्या मिलाए
0: मिट गए बैर पैर सबरेन अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण होए सेव की सेव
0: काल जंजाल बिकाते रहते राम नाम सुन रसना कहते
1: राम

मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कन कोई न जाने तुमरा अंत उचित ऊचा सक

गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रभ एको सोए। गुरमति घाट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया। नानक नाम मिला मन मानिया।

अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। राम कली महला पंजवा, तू दाना तू अबचल तू ही, तू जात मेरी पाती। तू अडोल कदे डोले नाही, ता हम कैसी ताती। एक है एक है एक तू ही, एक है एक है तू राया। तौ कृपा ते सुख पाया रहाओ, तू सागर हम हंस तुम्हारे। तुम मेहमान कलाला, तुम देवो तिन संक न मानो, हम पुंचे सदा निहाला। हम बालक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा। हम खेले सब लाड लडावे, तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम भी संग अखाई। मिलत मिलत मिलत मिल रहिया, नानक कहन न जाए। राम कली महला पंजवा, कर कर ताल पखावज नैन। माथे वजै रबाबा, करन मद बासरी बाजै। जह वै धुन आगाजा, निरत करे कर मनुआ नाचै। आने घूंगर साजा, राम को निरतकारी। पेखे पेख नहार दयाला, जेता साज सिगारी रहा। अखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चंदुआ। पवन विचोला करत अकेला, जल ते उपत हुआ। पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ। चंद सूरज दोए चरे चरागा, चौ कुंड भीतर राखी। दस पांतो पंच संगीता, एक है भीतर साथी। भिन्न भिन्न होए भाव दिखावे, सबो निरारी भाखे। घर घर निरत होवे दिन राति, घट घट वाजे तूरा। एक न चावे एक पवावे, एक आए जाए हुए तूरा। कहो नानक सो बाहर न नाचै, जिस गुरु भेटै पूरा। राम कली महला पंजवा, ओंकार एक तुन एक है। एक है राग लापै, एका देसे एक दिखावै। एक रहया व्यापै, एका सुरत एका ही सेवा। एको गुर ते जापै, पलो पलो रे कीर्तनिया। राम रमा रामा गुन गाओ, छोड़ माया के धंध सुआउ रहाओ। पंच बचित्र करे संतोखा, साध सुरां लै चल। बाजा माण तान तज ताना, पाओ न बीगा कल। फेरी फेर न होवे कभी, एक शब्द बंद पाले। नार दीनर हर जान हदूरे, कुंगर खड़क ते आग विसूरे। सहज आनंद दिखावे पावे, एहो निरतकारी जन्म न आवे। जे को अपने ठाकुर भावे, कोट मद एहो कीर्तन गावे। साध संगत के जावो टेक, कहो नानक तिस कीर्तन एक। राम कली महला पंजवा, कोई बोले राम राम कोई खुदाई। कोई सेवै गुसैया कोई अलाहे, कारण करण करीम कृपा तार रहीम रहाउ। कोई नावै तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए। कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सुपेद। कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाछे पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया। ज्योति में ज्योत रल जाया,
माटी माटी हुई एक, रोवन हारे के कवन टेक, कौन मुआरे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, एह तो चलत पया रहा, अगली किश खबर न पाई, रोवन हार पे उठ सिदाई, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पख लाए अंध, ए तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुकम अपार, नह को मुआ न मरण जोग, नह बिनसे अविनाशी होग, जो एह जानो सो एह नाहे, जानन हारे को बल जाओ, कहो नानक गुर परम चुकाया, ना कोई मरे न आवे जाया, राम कली महला पंजवा, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर न खाई महाकाल रहाओ, कोट जन्म भ्रम भ्रम भ्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो, बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखे एहो विचार, राग राम कली महला पंजवा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चार पुकारे ना तू माने, खट भी एका बात बखाने, दस अष्टी मिल एको कहया, ता भी जोगी भेद न लहया, किंकुरी अनूप वाजे जोगिया, मत वारो रे रहाओ, प्रथमे वसया सत का खेड़ा, तृतीय में किश पया दुतेड़ा, दुतिया अर्दो अर्द समाया, एक रहया ता एक दिखाया, एक सूत परोए मणिए, गांठी पिन पिन पिन पिन तनिए, फिरती माला बोबिद पाए, खिंचिया सूत ता आई थाई, चौमै एक मट है किया, ते बिखड़े थान अनक खिड़किया, खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी मैल कर पाया, इयों किंकुरी अनूप वाजे, सुन जोगी कै मन मीठी लागे, रहाउ दूजा, राम कली महला पंजवा, तागा करके लाई थिंगली, लो नाड़ी सुआ है अस्ति, अंबे काकर डंडा थरिया, क्या तू जोगी गर्भे परिया, जप नाद दिन रहनाई, तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ, गहरे विभूत लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंद्रा थारी, मांगे टूका तृप्त न आवे, नाद छोड़ जाचे लाज न आवे, चल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासीरा, गुर गोर की तैबूज न पाई, फिर जोगी आवै जाई, जिसनु हुआ नाथ कृपाला, रहरा सामारी गुर गोपाला, ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, यों जपिया नाथ दिन रहनाई, हुण पाया गुर गोसाई रहाउ दूजा, राम कली महला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दिसै कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रिहार रस मीठा, गुरमुख किरने विरलै डीठा रहाउ, निर्मल जोत अमृत हर नाम, पीवत अमर पये नह काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, आनंद रूप प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब किश तेरा,
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨੀਚ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪੜਦਾ ਟੂਟਾ, ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੇਵਕ ਲਾਇਓ ਆਪਣੀ ਸੇਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਦੇਵ, ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋਹ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾਉ, ਮਹਿਮਾ ਜਾ ਕੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਦੇਹ ਜਿਸ ਧੀਰ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਰਾਏ, ਸੋ ਨਰ ਬਹੁਰ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਆਪ, ਤਾਕੋ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ, ਲਾਲ ਰਤਨ ਤਿਸ ਪਾਲੈ ਪਰਿਆ, ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਉਹ ਜਨ ਲੈ ਤਰਿਆ, ਨਾ ਕਿਸ ਭਰਮ ਨਾ ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ, ਏਕੋ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਜਾ, ਜਤ ਕਦ ਦੇਖੋ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਰਸਾਲ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਨ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੀਠਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਰਜ ਨੈਨ ਹੋ ਡੀਠਾ, ਆ ਮੋਹਿ ਜਾਨੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਬਲਾਈ, ਬੁਝ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਵਾਰੀ ਮਮਤਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲਿਓ ਸਮਝਾਏ ਰਹਾਉ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਿਓ ਗੁਰ ਸਰਨਾ, ਗੁਰ ਪਕਰਾਏ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨਾ, ਬੀਸ ਬਿਸੋਏ ਜਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕੈ ਹੀ ਜਾਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਨਿਵਾਸ, ਨਾ ਕੋ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਰਾਈ, ਗੱਲ ਮਿਲ ਚਾਲੇ ਏਕੈ ਭਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਗੁਰ ਹਰ ਦੀਏ ਸੁਖਾ, ਤਾ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖਾ, ਆਪੈ ਆਪ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਰਤੁ ਰੰਗ ਗੋਪਾਲ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੈ, ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪੰਡਤ, ਮਨ ਕਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰ ਪੰਡਤ ਰਹਾਉ, ਆਗੈ ਰਾਖਿਓ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ, ਮਨ ਕੀਨੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਬਿਸਰਾਮ, ਤਿਲਕ ਚਰਾਵੈ ਪਾਈ ਪਾਏ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੈ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਅਰ ਆਸਣ ਧੋਤੀ, ਭਾਂਗਠ ਗ੍ਰੇਪੜੈ ਨਿਤ ਪੋਥੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੈ ਮੰਗੈ ਬਿਭੂਤ, ਇਹ ਵਿਦ ਕੋਈ ਨਾ ਤਰਿਓ ਮੀਤ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਕੀ ਉਸ ਉਤਰੀ ਮਾਏ, ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਪੂਰਨ ਹਰ ਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੋਟ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੀਰ, ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਕੀ ਚੇਰ, ਅਨਕ ਭਾਵ ਤਾ ਕੇ ਪਾਨੀ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੋ ਮਾਇਆ ਪਈ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਸੈ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਉਆ ਕੈ ਸਰੰਗ ਜਾਮ ਰਹਾਉ, ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਕੀਤਾ ਕੌਣ, ਕੀਰੀ ਜੀਤੋ ਸਗਲਾ ਭਵਨ, ਬਿਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਤਾ ਕੇ ਕੇਤਕ ਵਰਨ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਤਾ ਕੇ ਚਰਨ, ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਜਪ ਤਪ ਧਿਆਨ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦਾਨ, ਭਗਤ ਸੋਈ ਕਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆ ਮਾਨ,
साध संग मिल भय प्रगास, सहज सुख आस निवास, पूरे सतगुरु दिया विसास, नानक होए दासन दास। राम कली महला पंजवा, दोसन दीजै काहू लोग, जो कमावन सोई भोग, अपन कर्म आप ही बंद, आवन जावन माया थंद, ऐसी जानी संत जनी, प्रगास पया पूरे गुर बचनी रहा, तन तन कलत मिथिया विस्थार, हैवर गैवर चलनहार, राज रंग रूप सब कूर, नाम बिना होए जासी तूर, परम भुले बाद अहंकारी, संग नाही रे सगल पसारी, सोग हरख मैं दे बिरधानी, सागत इवही करत बिहानी, हर का नाम अमृत कल माहे, एह निदाना साधु पाहे, नानक गुर गोविंद जिस तूठा, कट कट रमैया तिन ही डीठा। राम कली महला पंजवा, पंज शब्द तै पूर्ण नाद, अनहद बाजे चरज विस्माद, केल करे संत हर लोग, पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग।

अपनी वस्तु आप शान, पी अमृत संतन प्रसाद, वड्डे भाग होवै तो पाईए, बिन जीवा क्या जाने स्वाद रहाओ, अर्दस वेद सुने कै डोरा, कोट प्रगास न दिसे अंधेरा, पशु प्रीत का संग रचे, जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे, जानन हा रहा प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान, बिगस बिगस अपना प्रभ गावे, नानक तिन जम नेड़ न आवे, राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित, हर तन रास निरास एह वित, काटी बंद हर सेवा लाई, हर हर भगत राम गुण गाई, बाजे अनहद बाजा, रस करस गुण गावे हर जन, अपने गुरुदेव निवाजा रहाओ, आए बनियो पूर्बला भाग, जन्म जन्म का सोया जाग, गए गिलान साध कै संग, मन तन रातो हर कै रंग, राखे राखन हार दयाल, ना किश सेवा ना किश काल, कर कृपा प्रभ की नी दया, बूढ़त दुख में काट लया, सुन सुन उपजियो मन में चाओ, आठ पैर हर के गुण गाओ, गावत गावत परम गत पाई, गुर प्रसाद नानक लिव लाई, राम कली महला पंजवा, कोडी बदले त्यागे रतन, छोड़ जाए ताहू का जतन, सो संचय जो होशी बात, माया मोहया टेडों जात अप

बक्सेंद्र हाव, दाज गए तृण पाप सुमेर, जब जब नाम पूजे प्रभ पैर, आनंद रूप प्रगट्यो सब थान, प्रेम भगत जोरी सुखमान, सागर सागर तरियो बाछर खोज, खेद न पायो नै फुन रोज, सिंध समायो कटके माहे, करण हार का को किश चरज नाहे, जो छूटो तो जाए पयाल, जो काडो तो नजर निहाल, पापुन हमरे वस नाए, रसक रसक नानक गुण गाहे, राम कली महल्ला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे, माया मोहे बिया पै तोहे, कुदम करे गाडर ज्यो शेल, अचिंत जाल काल चकर पेल, हर चन कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाय, गुरमुख पावे साज तना रहाउ, ऊने काज न होवत बूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करे बेकार जियरे कहताई, गाफल संग न तुआ सुआ जाई, धरत तो अनक छल जाने, कौडी कौडी को खाक सिरशाने, जिन दिया तिसे न चेतै मूल, मिथ्या लोभ न उतरै सूल, पार ब्रह्म जा भय दयाल, एहो मन हुआ साधरवाल, हस्त कमल लड़ लाए लीनो लाए, नानक साचै साज समाए, राम कली महला पंजवा, राजा राम की शरणाए, निरपो पए गोविंद गुण गावत, साध संग दुख जाय रहाओ, जाके राम बसै मन माही, सो जन दुतर पेखत नाही, सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसके मस्तक हाथ गुर तरे, सो दास अंदेसा काहे करे, जन्म मरण की चूकी काण, पूरे गुर ऊपर कुर्बान, गुर परमेश्वर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस हुए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करे, साध संग सो भव जल तरे, अमृत पीवे साध प्यारी, मुख उजल साचे दरबारी, आनंद करो तज सगल बेकार, नानक हर जब उतरों पार, राम कली महला पंजवा।

दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख तामना हो तुम करता करना मैं नाही जा करी ना हो बलहारी कुदरत तेरा अंतरा जाई लखा रहा जात मैं जो जोत मैं जाता कला कर भरपूर तू सच्चा साहिब सिफ्स वाले हो जिन की ती सो